0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इब्ने इंशा की कलम और जगजीत जी की आवाज में हमने सुनी ये खूबसूरत गजल। और नए साल के इस नए से मिर्ची महफिल में आपका इस्तकबाल करता है आपका ताशी। हाँ जी, और चांद का इस्तेमाल तो आपने कई बार सुना होगा शायरी और कविताओं में, लेकिन आज आपको बताऊं चांद का एक पर्यायवाची, बोले तो सिनोनिम, जिसका इस्तेमाल करके भी कई सारे शेर हुए हैं, और वो लफ्ज है महताब। अब इसका इस्तेमाल आप देखें दो शेरों से। पहला अजहर इनायती साहब की कलम से लिखते हैं कि हर एक रात को महताब देखने के लिए मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए। वाह जी वाह, हबीब जालिब के यहाँ भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है चांद के सिनोनिम महताब का। गजल के दो शेर मुलायजा फरमाएं कि हमारी भी संभल जाएगी हालत, वो पहले अपनी जुल्फें तो संभालें, निकलने को है वो महताब घर से, सितारों से कहो नजरें झुका लें। आए हाय, अब चांद से डिराइव्ड एक और लफ्ज है चांदी, जिसके बड़े खूबसूरत इस्तेमाल के साथ आप सुने जफर गोरख पुरी साहब का लिखा अगला आइकॉनिक नगमा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। पंकज उदास साहब की आवाज में सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: बाकी सब गंगा।
1: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ? गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ।
2: हाँ, sure.
3: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी।
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे।
3: सही बात कह रही हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ,
2: आप किससे बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
2: हेलो,
3: हाँ बोलिए।
2: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए।
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं। बिल्कुल नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें
3: नहीं,
2: कर रहे
3: नकली तरीके से। क्या
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है? असली औकात नहीं कर रहे हैं।
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
2: वो तो कोई बपौती है क्या?
3: नहीं नहीं, बात नहीं तो तमीज सीखिए। नहीं तमीज,
2: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी है।
3: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया।
2: Oh my.
3: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय ये दिल, ये पागल दिल मेरा, मोहसिन अली नकवी साहब की कलम और गुलाम अली साहब की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू,
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू करवाए उर्दू के पहले सबसे बड़े शायर जिन्हें खुदाए सुखन मतलब शायरी का खुदा कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन मीर तकी मीर साहब की। 1810 के लखनऊ में इनका जन्म हुआ और लफ्जो मानी के जादूगर बेमिसाल शायर मीर तकी मीर उर्दू गजल का वो प्रेत हैं कि जो उसकी जकड़ में आ जाता है जिंदगी भर वो उसके अधीन ही रहता है। बड़े आइकॉनिक शेर रहे हैं उनके जिनमें से कुछ आपके नजर कर रहा हूं। लिखते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। तदबीरें मतलब टैक्टिक्स। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। एक और मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है उनका कि होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर, होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर, क्या रब्त मोहब्बत से उस आराम तलब को। वाह जी वाह, उनकी शायराना काबिलियत का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि जमाने के मिजाजों में बदलाव के बावजूद उनकी शायरी की महानता का सिक्का हर दौर में चलता रहा। खैर बहुत हुई बातचीत, ज्यादा वक्त जाया करे बगैर राजेश रेड्डी साहब की कलम और हरिहरन जी की आवाज में सुनते हैं अगली गजल हल्का सा एक नशा सा सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नुसरत साहब की आइकॉनिक आवाज में हमने सुना ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और आपका ताशी है आपके साथ। और दर्द हल्का हल्का हो या सुरूर, दोनों ही हालतों में दर्दीले लोगों को बड़ा मजा आता है। गुलजार की वो गजल याद आती है मुझे कि दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है, आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। वाह जी वाह। और ये जो हल्का सा दर्द है ना, कुछ तो रिलेशन है इसका और रात का। जैसे जैसे रात और काली होती जाती है, ये दर्द और बढ़ता जाता है। अगला नगमा सुने मखदूम मोहिउद्दीन साहब की कलम, लता जी और तलत अजीज की आवाज में, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
3: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
2: होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज अ रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स, ओडिसी एक बार अवश्य देखें और अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट और उससे भी उम्दा गजल हमने सुनी भूपिंदर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में। और अब वक्त आ गया है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि मिर्ची महफिल में आपका ताशी आपको सुनाए एक गजल जो उसके जहन में अटकी पड़ी है। बिल्कुल। और ये जो गजल है ये बहादुर शाह जफर साहब ने लिखी थी और इसको गाया है मेहंदी हसन साहब ने। एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से, मेरी बड़ी पसंदीदा है, तो अगर कुछ भूल चूक हो माफ करिएगा। पेश खिदमत है सिर्फ आपके लिए।

इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए अगला नगमा पेश है आपके लिए शफकत अमानत अली की आवाज में, फिर ले आया दिल। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मुजफ्फर वारसी की कलम और हरिहरन साहब की आवाज में हमने सुनी गजल, झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी, सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी। और मिर्ची महफिल पर अब वक्त है,
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि अपनी डायरी के कुछ सफ़े पलटूं और आपको सुनाऊं एक पुरानी याद। हमारी जो हिंदी टीचर थी ना, कविता मैम, वो बचपन में एक फ्रेज सिखाया करती थी कि जीवन क्षण भंगुर है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन हुआ लाइफ इज मोमेंट्री, ठीक है। और जिंदगी के सुख दुख, हंसी और आंसू, शोहरत और बदनामी, सब कुछ फेड हो जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं जहन में घर कर गई और थोड़े बड़े हुए तो जफर इकबाल साहब को पढ़ा और उनका ये बड़ा ही बेहतरीन शेर मुझे याद आता है। इसी बात पर लिखते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ओहो, मतलब इतना सटीक धारदार शेर लगता है ना मुझे ये। खैर, आए अगला नगमा सुनते हैं जावेद अख्तर साहब की कलम से, चित्रा और जगजीत जी की आवाज में, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट जफर गोरखपुरी साहब की कलम और पंकज उदास जी की आवाज में हमने सुना नगमा एक तरफ उसका घर एक तरफ कदम
1: और अब मौका है दस्तूर है Just check the drive for any big particles, and it seems okay. So we'll just put the lid back on. And by the way, this is the little filter I was talking about, and this catches any particles that might have landed on the.
0: एक बार जिगर शौकत थानवी और मजरूह सुल्तानपुरी दोपहर के वक्त कहीं काम के लिए बाहर निकले थे
2: यू में नीड अ विंडो टू स्टे अबव ऑल अदर एप्लीकेशंस एंड विंडोज टू वर्क सुटेबली इट कैन बी यूजफुल फॉर कीपिंग एन आई ऑन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन वाचिंग अ मूवी व्हाइल वर्किंग और माउंटिंग एन ऑडियो प्लेयर एट द टॉप ऑफ ऑल विंडोज
0: जिगर ने जवाब दिया मुझे मालूम है सोचा कि वक्त इनेबल ऑलवेज ऑन टॉप फीचर
2: In Windows 11, so let's grab the Windows.
0: So, without wasting time, let's start the video.
2: First of all, we'll go to Microsoft Store and search for an app that is Microsoft Power Toys. As the name suggests, Power Toys is a new feature that helps us to keep a Windows application always on top of the desktop at all times, even when another application is running. We need to install it. Post installation, it will look like this when we search it. If this feature is not supported in your country and you may find error like this, no problem at all. This means this feature is still not available in your country or your Windows 11 is not updated. Just do a simple web search of Microsoft Power Toys. And you can simply install it. It's a free feature update by Microsoft. Just click on download.

0: Here we have some more options like change password, reset it, manage multi-user, format it and some more. If we assign any computer as trusted one, we don't need to give password every time. Nice feature. Let's give the password and it's done.
1: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ.
2: हेलो, वेलकम बैक टू क्रैक द विंडोज. इफ योर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कीप्स डिस्कनेक्टिंग और एजेक्टिंग रैंडमली इन विंडोज 11, दिस वीडियो इज फॉर यू. आई वॉक यू थ्रू प्रोफेशनल स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स दैट एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम. स्टिक विद मी टिल द एंड बिकॉज़ वन ऑफ द हिडन सेटिंग्स आई विल शो यू इज द रियल गेम चेंजर.
3: .com आपके पास थोड़ा सा टाइम है? अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज़ से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है. आई बिलीव आपने
2: Always use the original USB cable or a certified high-speed USB 3.0, 3.2 cable.
3: कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी suitable job provide करेंगे.
2: Plug directly into your laptop or PC port.
3: अभी आप कहाँ job कर रहे हैं?
2: If the drive disconnects often, try another USB port.
3: देखिए options ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा CV
2: Go to device manager.
3: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन
2: इन डिवाइस मैनेजर यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर्स एक्सपैंड एंड कंफर्म योर ड्राइव इज लिस्टेड अंडर यूएसबी 3.0 3.1 3.2 कंट्रोलर नॉट जेनेरिक यूएसबी 2.0.
3: कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, यूएसबी
2: सिलेक्टेड पावर सेविंग वायर
3: रजिस्ट्री. दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी वैसे
2: प्रोफेशनल फिक्स. मोस्ट ट्यूटोरियल्स डोंट मेंशन वी एडेड द रजिस्ट्री टू स्टॉप यूएसबी पावर सेविंग एट द सिस्टम लेवल.
3: झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं,
2: नेविगेट टू,
3: आपने पॉटी लगाई है बच्चे
2: सिस्टम,
3: और इसमें
2: करंट कंट्रोल सेट.
3: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे भी मिलेगा. आपको हॉलीडे भी मिलेगा. मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप इसे पोछा लगा
2: सकते हैं.
4: Hello?
3: सर आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना. सर मनीष,
2: क्रिएट अ न्यू
3: मनीष कॉलिंग फ्रॉम
2: 32bits.com.
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं. सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर. सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा. सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना. दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है. आप रेडियो मिर्ची में मैंने मुर्गा बनाया, आपका पूरी दिल्ली सुन रही
2: है. Windows disables write caching by default on external drives for safety. But enabling it can massively improve speed. Go to device manager. Expand disk drives. Right-click your external drive. Properties. Go to Policies tab. Switch from Quick Removal to Better Performance. Pick Enable Write Caching on the device. Just remember to always eject safely after enabling this, otherwise you risk corruption.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: शहरयार की कलम और तलत साहब की आवाज में सुनी हमने खूबसूरत गजल, जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आज के लफ्ज से, रफ्ता, जिसका मानी होता है स्लोली या धीरे। अब तस्लीम फाजली साहब की लिखी और मेहदी हसन साहब की गाई मशहूर गजल का ही एग्जाम्पल ले लें। शेर है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, मतलब धीरे धीरे वो मेरी हस्ती, मतलब बीइंग का सामान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। और अब एक और शेर देखें कुमार बाराबंकवी साहब के जानिब से, लिखते हैं कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए, आए हाय। तो ले जस्ट लाइक दैट आपके उर्दू लफ्जों के आर्सेनल में जुड़ गया है एक नया लफ्ज, रफ्ता, मानी स्लोली। ऐसे ही और लफ्जों को समझने जानने के लिए जुड़े रहें मिर्ची महफिल से। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आनंद बख्शी जी की लिरिक्स और सुरेश वाडेकर साहब की आवाज में हमने सुना सनी मूवी से नगमा और क्या अहदे वफा होते हैं। और मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और इश्क मेरे ख्याल से ना वो बीमारी है जिसमें शख्स जब पड़ता है तो उसका इलाज ढूंढने के बजाय और बीमार होना चाहता है। अकबर इलाहाबादी साहब का एक बड़ा उम्दा शेर है कि इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई तो है, पर करूं क्या, अब तबीयत आप पर आई तो है। मुनव्वर राणा साहब के यहाँ भी इश्क को एक बीमारी की तरह ट्रीट किया गया है। वो लिखते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। उफ, अगली गजल में आप मुलाकात करेंगे एक बीमार से जो पूछ रहा है दूसरे से कि तुम भी बीमार हो कि नहीं। कैफी आजमी साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ।

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस हैं, उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है। होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्ची, 3.5 स्टार्स, ओडिसी एक बार अवश्य देखें, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। फरीदा खानम जी की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल। समय हो चला है मेरे जाने का, लेकिन ऑब्वियसली जाने से पहले
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आप हैं अपने ताशी के साथ, और ये मेरा ख्याल है कि सच्चाई सबसे ज्यादा उदास होती है। कुछ गजलें जो सबसे ज्यादा सच कह रही होती है ना, सबसे ज्यादा ट्रूथफुल साउंड करती हैं, वो ऐसे कचोट देती हैं अंदर से ना एकदम। ये गजल उनमें से एक है और न जाने क्यों मेरे जहन में अटकी हुई है। तो आज रात आपकी नजर है जगजीत सिंह जी की ये खूबसूरत गजल मिर्ची महफिल पर।

0: कोई जवाब है आपके पास?
1: मेरे पास तो नहीं है दोस्त, तो इसलिए मैं चुपचाप यहां से अपना सामान बटोर के चलने वाला हूँ। एक गजल के हवाले करके आपको छोड़ जाने वाला हूँ मैं। अगर आपको मुझसे कुछ बातचीत करनी हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मिर्ची महफिल सुन रहे थे आप। आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

0: जमा किया?
1: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
0: 23।
1: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
0: बिल आया था 2200 रूपए का?
1: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
0: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
1: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
0: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
1: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
0: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
1: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
0: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर
1: रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
0: चिल्लाने का क्या मतलब है?
1: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
2: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
0: हेलो
1: सर, से जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार। आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
0: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
1: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
0: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहे हैं यार।
1: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
0: कुकड़ों को
1: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi, it's hot.
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहां पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया और हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm IMAX थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स ओडिसी। एक बार अवश्य देखिए, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: रीना रॉय ने अर्ली 70s में जो अपनी पहली फिल्म साइन और शूट की थी वो थी डायरेक्टर बी आर इशारा की नई दुनिया नए लोग। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसका पहला सीन शूट करते वक्त इनको क्या दिक्कत आई थी, सुनिए एक इंटरव्यू में इन्होंने क्या शेयर किया था।
1: पहली बार कैमरा फेस किया तो वो ऐसा सीन था कि आपका बाप मर गया, एंड आई जस्ट लाफ मनिका के क्या कैसे करने का, एंड दे सेड ओ गॉड क्या करें अभी इसका, देन दे सेड कि अच्छा ऐसा नहीं मतलब ये हो गया, वो कहते हैं ब्रेन वॉश जैसा तुम्हारा ऐसा सैड हो गया वो हो गया, आई वाज सो दिस के देखो तो बिलीव करो ना। फिर उन्होंने फिर बोला ये हम नहीं करेंगे, अब थोड़ा लाइट सीन लेते हैं। देन आफ्टर दैट इशारे जी ने कहा कि आई डोंट थिंक सो ये लड़की जो रेफरेंस जहाँ से भी आए, बट आई डोंट थिंक सो शी कैन मेक इट इन इंडस्ट्री बिकॉज इसको तो समझ नहीं है कि एक्टिंग क्या है, ना इंस्टीट्यूट ना कुछ ना ट्रेनिंग ना कुछ।
0: एक्टिंग सीखने में बंदी को थोड़ा टाइम लग गया लेकिन कुछ चीजों में ये एकदम प्रो थी, जैसे कि डांसिंग, बाइक चलाना, इन्हें बाइक चलाने का बहुत शौक था, कितनी फिल्मों में इन्होंने बाइक चलाई है।
1: मैं बाइक पे ही रहती थी, जब शॉट रेडी होता था तो मुझे मैसेज आता था मैम शॉट रेडी बाइक छोड़ के आ जाओ, क्योंकि इतनी अच्छी बाइक थी तो मम्मी तो घर में रखने नहीं देती थी, तो और वादा दिया है मम्मी को कि बाइक नहीं खरीदनी है तो नहीं खरीदी थी। छोटी बहन ने चला के पैर टूटवा लिया, तब से बोला कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारा देखा देखी बोली छोटी ने चलाई तो बाइक तुम खरीदोगी नहीं।
0: इनकी फिल्म सनम तेरी कसम में तो इनकी एंट्री बाइक पे होती है और उस बाइक पे इनके किरदार का नाम भी लिखा रहता है NISHA निशा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: इस दैट मिस्टर विपुल?
3: यस
4: मिस्टर विपुल, हाय, आई एम अतुल कॉलिंग फ्रॉम .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
3: हाँ हाँ बोलिए।
4: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
3: ओके,
4: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
3: बट इसमें करने क्या होगा?
4: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
4: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
3: फाइन।
4: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
3: हैंड मिलता है।
4: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
3: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
4: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
3: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
3: Have you gone mad?
4: आपने पॉटी लगाई है बच्चे?

0: कभी।
1: टॉकिंग अबाउट
0: और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं।
0: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मान देते हैं, आज चमकदार मान देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
0: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
0: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
0: सर मनीष।
1: हु आर यू?
0: सर मनीष, कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
0: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ। बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: Pranichis with Charu, only on

0: रीना रॉय उन एक्टर्स में से एक थी जिन्होंने नए टैलेंट के साथ काम करने से कभी इनकार नहीं किया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसीलिए सुभाष घई जब अपनी डेब्यू फिल्म काली चरण के लिए उनके पास पहुँचे तब भी उन्होंने मना नहीं किया। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: I didn't have any problem. मैंने तो हमेशा राज बब्बर was new. I worked with him and they were one or two like this chapter वाले थे कि भाई इनको लेंगे तो ये problem होगा. Even अंधा कानून, then कमल हसन. So I don't have problem to work with new people. मैंने सुभाष घई के साथ as a leading काम की, वो फिल्म लगी नहीं. He was the hero. और उसके बाद I don't know what happened. वो फिल्म complete हुई नहीं हुई, we don't know anything. And then came to my mother कि मुझे direction का chance मिला है तो I would like your daughter to work in the film. उस तरीके से, और वो मेरी मम्मी के बेटे भी बने हुए थे उस जमाने।
0: वैसे काली चरण फिल्म से एक और चीज की शुरुआत हुई थी, वो थी रीना रॉय एंड शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बीच में नजदीकियाँ, जो बाद में उनको काफी महंगी पड़ी बिकॉज इट ब्रोक हर हार्ट।
1: गुजर गई जो दास्तां, अभी क्या रिपीट करना।
0: पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: रीना रॉय की मोस्ट पॉपुलर ऑन स्क्रीन जोड़ी थी जीतू जी के साथ। जी मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्होंने कुछ 22 फिल्मों में साथ में काम किया, जिनमें 17 फिल्मों में ये एज रोमांटिक पेयर थे। इनमें से 12 फिल्में हिट हुई थी भाई। इनकी पहली फिल्म साथ में जो रीना रॉय जी की फर्स्ट हिट फिल्म भी थी, वो थी 1973 की जैसे को तैसा। ये फिल्म रीना जी को कैसे मिली, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: ये एक्चुअली डबिंग थी जितेंद्र जी की, एंड वहाँ पर ये लोग वो एडिटिंग कर रहे थे कुछ मेरी वो एक फिल्म की जो लगी नहीं, तो दे वाज सम लिटिल डांस, तो दे वांटेड सम न्यू गर्ल न्यू फेस एंड ऑल दैट। उस हिसाब से जितेंद्र जी ने देखा कि ये लड़की कौन है, जस्ट फाइंड आउट, क्योंकि हमारे डबल रोल था जीतू जी का, उसके लिए एक लड़की जो दूसरे वाले हीरो के साथ है इनको ले लेंगे। उस हिसाब से आई वाज सेलेक्टेड जितेंद्र जी, वेरी नाइस मैन एंड वेरी गॉड फियरिंग एंड वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड पंचुअल, वेरी पंचुअल। So we completed very fast. वो 2-3 महीने में complete हो गई फिल्म and it was super duper hit.
0: इसी बात पे इन दोनों का इस फिल्म का गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स, ओडिसी एक बार अवश्य देखें, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: पुरानी जीन्स with Charu, only on

0: रीना रॉय जो फिल्मों में नई नई आई थी ना, उनको एक बड़ी मुश्किल आती थी, सीरियस सीन में उनकी हंसी निकल जाती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार तो डायरेक्टर बी आर इशारा ने उनको एक धमकी भी दे दी थी कि अगर तुम हंसी और रोई नहीं तो फिर देखना। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में रीना जी ने क्या शेयर किया था।
1: दैट वाज इन जरूरत कि आपके पति लंगड़े हो गए, तो उनका वो हो गया, ही इज ऑन व्हीलचेयर एंड आई हैव टू रिएक्ट, और वो लंगड़े हो गए और आपको रोना है, चिल्लाकर और पैरों के पास जाना, और मैं गई चिल्लाई, मुंह छुपा के मैं हंस रही थी, फिर मैं वो देखू विजय अरोड़ा, मैं हंस दू। उन्होंने क्या किया फिर, बोले कि अभी तुम अगर नहीं किया ना तो मैं चक्का लगाऊंगा तुम्हें सिगरेट का, और स्मोक डराने के लिए नहीं, जैसे कि यू डोंट डू योर होमवर्क यू आर गोइंग टू गेट पिस्टिक, वैसा वाला।
0: वैसे रीना जी जब नई नई फिल्मों में आई थी ना, इनको लेकर एक अफवाह भी थी
1: शुरू में जब मैं आई थी, तो वो कहते थे कि आशा पारेख की बेटी है, एंड आई हैड डन दैट जख्मी, दैट वाज ताहिर एंड नासिर हुसैन प्रोडक्शन, तो वो उस वजह से उन्होंने कहा कि आपको पता है अफवाहें तो होती रहती
0: है। अभी रूमर्स का तो वही है फिर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मैं क्या कह रही थी, गाना सुन लेते हैं जख्मी फिल्म का, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

0: रीना रॉय जब छोटी थी तो बड़ी शरारती थी, उछलती कूदती फुदकती घूमती फिरती रहती थी बॉम्बे के बांद्रा एरिया में। वहीं पर नरगिस जी ने उनको नोटिस किया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में सुनिए रीना जी ने एक बार एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: मैं रोड पे खेल रही थी, नरगिस जी ने मुझे देखा एंड देन आफ्टर दैट दे वांटेड टू नो कि मेरा कौन सा मतलब हम कौन सी बिल्डिंग में है। तो उनके ऑफिस से कोई लोग आए, उन्होंने फिर कहा कि आपकी बेटी को फिल्मों में काम करना है बिकॉज हम इसी टाइप की लड़की देख रहे हैं फॉर द फिल्म। एंड माई मदर सेड नहीं अभी तो वो पट रही है, अभी तो इतनी जल्दी हम नहीं वो करवा सकते। उसके बाद फिर मैं मुझे पता लगा तो मैंने भूख हड़ताल कर ली, जो कि सबसे ज्यादा खाने का शौक मुझे था। तो मम्मी को बहुत टेंशन हो गई, मेरी बहन बरखा, उसने कहा कि मम्मी शौक है उसका थोड़ा कर लेने दो ना, बाद में तो पढ़ाई तो हो ही जाएगी। That is no problem.
0: Well, इसके बाद नरगिस जी ने रीना रॉय को काफी जगह पे रेफर किया। रीना रॉय फीचर हुई थी 80s की रॉकी फिल्म में, जो संजय दत्त की डेब्यू फिल्म थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहा हूँ
4: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं। आपको
3: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
4: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
3: 23।
4: एक सेकंड सर, आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
3: हाँ जी हाँ जी।
4: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
3: बिल आया था 2200 रूपए का?
4: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
3: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
4: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
3: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
4: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
3: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
4: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
3: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
4: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
3: चिल्लाने का क्या मतलब है?
4: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
5: बिल तो दे जाओ भाई।
3: हेलो
4: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
3: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
4: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
3: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
4: नहीं तो आप ये बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
3: कुकड़ों को
4: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: रीना रॉय जी क्या बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? क्या उनको फिल्में देखने का शौक था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में सुनिए उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: नहीं, मुझे फिल्में देखने का शौक था। मम्मी फिल्में मुझे नहीं दिखाती थी। जब हीरोइन रोती थी तो मैं दहाड़े मार के रोती थी, उस पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है। और विलन से तो बहुत नफरत होती थी, मतलब नींद में भी उठ के फिर कमरे में जाती थी कि वो विलन इधर तो नहीं आ गया। दैट वाज द लाइक यू नो माय अटैचमेंट टुवर्ड्स द फिल्म। तो फिर मेरा फिल्म दिखाना बंद कर दिया था। आई न्यू दैट आई विल डू समथिंग बट आई डिडंट नो कि मैं इतनी सक्सेसफुल हो जाऊंगी। डांसिंग का भी शौक था, वो भी मुझे मेरी एनर्जी लेवल देखने के बाद मम्मी ने कहा कि इसकी एनर्जी लेवल इतना है कि खेलना कूदना तो इसको डांस में डाल दो, थक के सो जाए बस, उस वजह से डाला।
0: वेल, रीना जी ना एकदम हाइपर एक्टिव बच्चा थी। डांस भी सीखा, हॉर्स राइडिंग भी सीखी, बाइक राइडिंग भी सीखी, स्विमिंग भी सीखी, बड़ा कुछ सीख लिया इन्होंने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: रीना रॉय जी, क्या खूबसूरत लगती थी यार वो। मिर्ची, सुन रहे हैं आप? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनको कब एहसास हुआ कि वो इतनी खूबसूरत हैं? सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में इस सवाल का उन्होंने क्या जवाब दिया था।
1: एक्चुअली आई वाज नेवर इनटू लाइक एडमायरिंग माय सेल्फ एंड ऑल दैट, बिकॉज आई वाज वेरी मच लाइक एनर्जी से ऐसी भरी हुई रहती कि नाचो, एक्सरसाइज करो, स्विमिंग करो, हॉर्स राइडिंग करो, बाइक, अपने आप को देखने का। जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, आई वाज नेवर इन लव विद माय सेल्फ, फेल्ट लाइक, बट आई वाज वेरी हार्ड कोर। जैसे सुबह उठो तो बस प्लान बनना है कि आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है।
0: लीजिए बताइए। अच्छा, उनसे ये भी पूछा गया था कि ऐसी क्या चीज उन्होंने की जो लोगों को लगता था कि रीना रॉय कभी नहीं करेंगी।
1: इट वाज वेरी सडन, आई वाज सो बिजी। और एक्चुअली यू नो यू नीड अ ब्रेक एट टाइम्स, यू नो आप तीन शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ शूटिंग वहाँ शूटिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। फिर मैंने कहा चलो करके हम भी देखते हैं, बस मैंने कर दी।
0: वैसे बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब से इनको जो हार्ट ब्रेक मिला उससे इतनी टूट गई कि कहीं ना कहीं सुकून चाहती थी, सेटल होना चाहती थी। पर देखिए उस शादी में भी उनको ज्यादा टाइम खुशी नहीं मिली। ये प्यार इसके मामलों में ना कुछ लोगों का लक ऐसा ही रह जाता है, थोड़ा हार्ड। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स, ओडिसी एक बार अवश्य देखें, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स with Charu, only on

0: 70s, 80s में रीना रॉय बहुत सारे लोगों का क्रश थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में उनके क्रश कौन थे, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: यू विल रियली बी शॉक्ड बिकॉज़ यू नो आई यूज्ड टू लव मनोज कुमार, आई लव्ड हिम कि मम्मी देखो कितना देश के लिए, और मम्मी ने बोले इसने कभी कब जाके देखे कि क्या गाना, और देन हिज फोटोग्राफ्स एंड ऑल दैट, से व्हाट अ ग्रेट मैन।
0: वैसे इनको राजेश खन्ना पे भी क्रश था और इसीलिए इनकी मम्मा ने इनका राजेश खन्ना की फिल्में देखना बंद करा दिया था।
2: क्या हुआ था कि मैंने जब मैं स्कूल जाती थी तो मैंने बंक करती थी मैं, और वहाँ पर वो उनका घर था ना, वहाँ खड़े होकर अपनी दो तीन सहेलियों के साथ कोई झलकी मिल जाए, नजर आ जाए, वो उसके वजह से।
0: वैसे फिल्मों में काम करते करते इनको जब कोई एक्टर अच्छा लगता था तो उसको वो कैसे रीच आउट करती थी?
1: हमारे जमाने में वी कुडंट अप्रोच अ पड़ोसी, सिस्टम वाज वेरी डिफरेंट। इफ यू यूज्ड टू लाइक समबडी आल्सो, हमारी कुर्सी अलग, वो कुर्सी अलग, और मदर बीच में ऑलवेज यू नो व्हेन यू आर ग्रोइंग यू लाइक एवरीबॉडी, जो भी अच्छा हैंडसम यू नो मम्मा सब प्यारा है, कितना क्यूट चुप कर।
0: दिस वुमन वाज फायर क्रैकर भाई। पुरानी जींस पर मैं हूं चारू आपके साथ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: रीना रॉय के फेवरेट को एक्टर वैसे तो जितेंद्र साहब थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, बट वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट राजेश खन्ना साहब की करती थी। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: राजेश खन्ना वाज वेरी वेरी नाइस पर्सन, दिल के बहुत अच्छे, लोगों के लिए करना, आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करना, बट नेवर शोइंग ऑफ साइड व्हाटएवर यू नो ही यूज्ड टू डू फॉर पुअर पीपल एंड ऑल दैट। राजेश खन्ना के लिए मैं इससे कहना चाहूंगी क्योंकि ही वाज लाइक अ वेरी गुड एडवाइजर टू मी एंड like a elderly brother I treated him. He used to come to my house. My mother always used to say the vyah ho jaye, bas iske bhi shaadi ke liye uske piche padho ke ho jaye, like us kisam ka rishta. Very good soul, very good hearted.
0: वैसे रीना रॉय ना बहुत शरारती थी, लेकिन वो कौन सा एक्टर था जो उनसे भी ज्यादा शरारती था?
1: कमल हसन था, वेरी वेरी नॉटी। मतलब ये कि हम लोग की वो सनम तेरी कसम जो फिल्म थी उसके अंदर, बस के अंदर तो कभी किसी के बाल में च्युइंगम लगा देना, कभी कुछ कर देना, और फिर रात को रूम के बाहर कोई गेटअप बदल के आकर कोई और ही भूत बन के डराना एंड ऑल दैट, और अचानक दरवाजा खोलो तो एक निगरो आदमी दरवाजे बाइक में आया मिलने के लिए।
0: सोच के ही मजा आ रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Yabala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग.
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
2: हाँ, sure.
3: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी.
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे.
3: सही बात कह रही है. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं, हाँ,
2: आप किस से बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
2: हेलो.
3: हाँ बोलिए.
2: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए.
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
3: हाँ?
2: नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें कर
3: नहीं,
2: रहे हैं.
3: नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है.
3: असली
2: औकात नहीं कर रहे हैं.
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
2: वो तो कोई बपौती है क्या? कैसे बात कर रहे हैं?
3: नहीं, नहीं, तमीज सीखिए. नहीं,
2: तमीज नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है.
3: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया.
2: Okay.
3: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
4: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: दी ओजी नागिन, आपको पता है कौन है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। रीना रॉय जी की करियर की माइलस्टोन फिल्म नागिन, ये फिल्म उनको कैसे मिली सुनिए एक बार एक टीवी शो में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: नागिन एक्चुअली क्या हुआ, सारी हीरोइनों ने रिफ्यूज कर दिया था। दे वेंट टू रेखा जी, दे वेंट टू आशा पारेख, सो मेनी हीरोइंस उस जमाने की जो बड़ी हीरोइंस थी। तो देन मेरे पास आए क्योंकि मैं थोड़ा डांसिंग वांसिंग अच्छा कर रही थी, तो मेरी माँ ने भी कहा है तू बंदियां नू मार रही है, क्यों कर रही है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा है और थोड़ा डिफरेंट है, मैं जरूर करूंगी। उस हिसाब से आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट फिल्म।
0: और ये नागिन का रोल निभाते हुए उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी?
2: बिकॉज उस वक्त यू नो ग्लास के कॉन्टेक्ट लेंस होते थे, वी यूज्ड टू नॉट हैव दोस सॉफ्ट वन। और नागिन का ये रोल था कि आई एम जहाँ पर भी मैं खड़ी रहती थी, आंधी तूफान पत्ते उड़ रहे मट्टी उड़ रही, एंड दैट यूज टू डैमेज माई आईज, फिर निकालो फिर साफ करो आंख, फिर रियली वी वर्क वेरी हार्ड।
0: अच्छा, इस फिल्म के बाद ना लोग उनसे डरने लग गए थे?
1: हाँ बहुत डरते थे, बहुत बहुत। नहीं शूटिंग पे जाते थे पहले तो क्राउड यूं आता था, और आफ्टर नागिन जहाँ मैं गाड़ी से पैर निकाल के खड़ी रही, आ गई
0: अभी डस लेगी। चलिए इस फिल्म का ये सुपरहिट आइकॉनिक सॉन्ग सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रीना रॉय जब नई नई फिल्मों में आई थी ना, तो टॉम बॉय, सुपर एनर्जेटिक, गूफ अप क्वीन थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इनके साथ ना एक और चीज हो जाती थी, सीरियस सिचुएशन में इनकी हंसी निकल जाती थी। अपनी पहली फिल्म के एक सीन शूट का उन्होंने क्या किस्सा शेयर किया था एक इंटरव्यू में, सुनिए।
1: दैट वाज अ नई दुनिया नए लोग, कोई पहाड़ था बैंगलोर में, पूरा यूनिट सुबह से वो लोग चढ़े एंड आई थिंक सो 2:30 बजे तक दे वो देयर, कैमरा सेट एंड एवरीथिंग सेट, और हीरो और मैं हम ऐसे बैठे हुए, और मुझे बोला गया कि देखो ट्रेन, हम वो शॉट ले रहे हैं, ट्रेन जा रही है और आपका बैग है और हीरो का भी बैग है, अगर लाइन भूल भी गए तो कुछ बोलना मत, चाहे बैठे रहना दोनों, ट्रेन पीछे से जा रही, लाइक वी बोथ आर सिटिंग, अभी चलो ट्रेन आ रही आ रही आ रही, सब परेशान, अभी तक ट्रेन नहीं आई, और फाइनली ट्रेन आ गई, तो उसमें दो लाइन मुझे बोलनी थी, दो लाइन उन्होंने बोलनी थी, वो हीरो ने बोल दिया, जहाँ मेरा वक्त आया इतना ट्रेन ट्रेन ट्रेन तो मैं लाइनें भूल गई, और फिर डायरेक्टर की भी लाइन भूल गई मैं, तो मैं हंस दी, इट वाज सो एम्बैरेसिंग। डायरेक्टर ने अपना चाय का ग्लास फेंका और खाना नहीं खाया उन्होंने।
0: भाई ये अर्ली 70s की बात है, ये 15 साल की थी जब इनकी पहली फिल्म आई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मैं जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूँ। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज अ रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स। ओडिसी एक बार अवश्य देखिए, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: पुरानी चीज विद चारू ओनली।

0: रीना रॉय जब छोटी थी तो कैसे थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में इस बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: स्कूल में आई वॉज वेरी नॉटी और मुझे वैसे भी बचपन से खेलने का बहुत शौक था। साइकिलिंग में करती थी और मम्मी ने साइकिल हमको दिला के नहीं दी थी तो वी यूज्ड टू पे मनी। हमारे एरिया में एक छोटा सा गैराज था, रेंट पर साइकिल में लेती थी जो पॉकेट एक्सपेंस मिलता था और फिर पूरा दिन साइकिल चलाना और कभी कभी स्कूल बंक भी कर देना, मेरी दो तीन सहेलियों को एक को पीछे बिठाना एक को आगे बिठाना। और उसी गली में हमारी कुछ बड़े बड़े पुराने झाड़ थे पेरू के इमली के, वो सब चीजें मैं करती और पीछे माली पीछे भागना एंड ऑल दैट। बहुत बहुत नॉटी, लिटरली इट वाज लाइक आई हैड अ टीम ऑफ गर्ल्स, गुंडे टाइप, यू नो आई थिंक सो। माय मदर वाज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, आई गॉट इट फ्रॉम माय मदर साइड, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत डेयरिंग थी, अब तो है नहीं, तो वो सारे जो उनकी क्वालिटीज है वो मुझ में है। जो भी उन हमारे रिश्तेदार आते तो दे से वी रिमेम्बर योर मदर व्हेन वी सी यू, यू नो।
0: That's so sweet. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Nici.
1: Iscabana, uscabana, sacabana, rabana, burga, burga, la virtua la burga.
2: Hello.
3: Is that Mr. Vipul?
2: Yeah,
3: it's Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
2: हाँ हाँ बोलिए.
3: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
2: ओके.
3: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे.
2: बट इसमें करना क्या होगा?
3: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है.
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर. देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
2: फाइन.
3: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
2: हैंड.
3: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
2: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
3: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी.
2: इस बी कैटेगरी में

0: क्या क्या बकवास कर रहे हैं।
1: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मान जाते हैं, आज चमकदार मान जाते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे।
0: क्या बके जा रहे हैं?
1: हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
0: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। ओके,
1: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
0: हेलो
1: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
0: हु आर यू?
1: सर मनीष।
0: हु आर यू?
1: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
0: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
1: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ। बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर, सर आपको सी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: टक टक

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
3: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
2: होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज अ रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स, ओडिसी एक बार अवश्य देखें, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Grabala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहा हूँ
2: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं। आपको
1: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
2: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
1: 23।
2: एक सेकंड सर, आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: बिल आया था 2200 रूपए का।
2: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
1: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात चिल्ला के भी की जाती है।
2: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
1: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
2: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
2: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
3: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
2: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
2: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
2: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
1: पागल
2: सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
1: कुकड़ों को
2: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मैं खत्म तो खेल खत्म।
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
3: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
2: होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स। ओडिसी एक बार अवश्य देखें, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Present moment में रहना इतना जरूरी क्यों है और ये better sleep में कैसे मदद करता है? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सर, आपने आपको सिर्फ ये बोले कि इस वक्त इस बारे में नहीं सोचना, चलो अभी जो काम कर रहे हैं खुश होकर एकदम विलीन होकर इसको काम को करते हैं, ये भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी मन के लिए अच्छी बात है।
4: क्योंकि रिमाइंडर, सी मेडिटेशन एक रिमाइंडर है, तो ये भी एक रिमाइंडर कि जो हम कर रहे हैं लेट अस डू इट वेल।
3: ये बहुत अच्छी बात की कि मेडिटेशन को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं, मेडिटेशन बहुत सिंपल है। मेडिटेशन इज जस्ट अ रिमाइंडर कि हम जो कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से करो। इतने सिंपल भाव से अगर किसी ने समझाया होता पहले तो हम रोज मेडिटेशन करते।
4: मेडिटेशन माइंडफुलनेस यही तो है ना, आप माइंडफुल हैं, सी आप मोमेंट में हैं। एनीबडी हु इज प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन क्या है, वो उस मोमेंट में है। चाहे एज सिंपल एज आप खाना बना रहे हैं, आप टमाटर भी काट रहे हैं, आप उस मोमेंट में
3: है।
4: हम कभी भी मोमेंट में नहीं होते हैं। ये भी एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चलता है कि हम 80% या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में,
3: बिल्कुल प्रेजेंट में रहते ही नहीं कोई।
4: तो बस इसीलिए तो हम, और जो मेडिटेटर है वो क्या कर रहा है, वो सारा दिन बैठ करके कोई, हमें लगता है कि मेडिटेशन बना वो कोई सारा दिन कोई लोटस शेप पोस्चर में बैठ करके कुछ कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली वो 30 मिनट्स निकाल करके कोई प्रैक्टिस करता होगा। उसको कोई भी चीज जैसे एक्सरसाइज है, आप करते तो 30 मिनट्स के लिए है, पर उसका बेनिफिट तो आपको सारा
3: आपको
4: दिन मिलता है,
3: ना? मिलता है। बिल्कुल सही कह रही है। तो आप कह रही है कि अगर टमाटर भी काट रहे हो तो वाह वाह टमाटर कितने मजेदार, ये बोलते हुए उसमें विलीन होके उसको एंजॉय करके आप टमाटर काटिए।
4: नॉट एग्जैक्टली, आप ये भी नहीं बोल रहे हैं, पर आप ये भी नहीं बोल रहे हैं क्या मजबूरी है। क्या मैं ये रोज, सी पॉजिटिव सोचने से ज्यादा जो नुकसान कर रहा होता है कि कहीं बस सिंपल ऑर्डिनरी टास्क में हम बहुत कई बार बहुत नेगेटिव भी सोच रहे होते हैं। है वो ऑर्डिनरी टास्क, टास्क ऑर्डिनरी हो सकता है, स्थिति महान होनी चाहिए।
3: टास्क ऑर्डिनरी लेकिन स्थिति महान होनी चाहिए।
4: हाँ, मतलब कर्म साधारण है आपका। सब तो महान कर्म नहीं कर रहे ना अभी, हमारे कर्म साधारण है। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई बेकरी में कुछ बेक कर रहा है, कोई एवरीबडी व्हाटएवर दे इज डूइंग साधारण कर्म है,
3: लेकिन सोच असाधारण है,
4: स्थिति महान है।
3: वाह क्या बात,
4: साधारण कर्म है लेकिन स्थिति महान है। जब वो साधारण कर्म में आपकी स्थिति महान होती है ना, तो वो कर्म ऑर्डिनरी कर्म होता है, पर किसी को वो कर्म करते हुए भी आपको देखने में अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये कुछ आर्ट हो गया। ऑर्डिनरी कर्म भी आपको देखने वाले को, इवन बिकॉज यू आर एंजॉयिंग सो मच, तो उसको लगता है एंजॉय कैसे कर सकते हैं। आप एक कैब में भी बैठते होंगे, आप देखेंगे कोई चलाता है, ऑटो है कैब है, बड़ा परेशान होकर, बड़ा
3: बिल्कुल
4: चिड़चिड़ करके, इधर धक्का, इधर कभी अब्यूज भी कर दिया, इधर भी देखा कई है, वो उनका ऑटो ही होगा। उसमें कोई घास लगा रखी है, गाने बजाए हुए हैं, सुंदर सा उन्होंने कोई कीचेन टांगा हुआ है, वो अगरबत्ती, सो यू कैन सी कि वो अपने कर्म को भी कितना
3: एंजॉय कर रहा है,
4: एंजॉय कर रहे हैं, उसको कितने प्यार से कर रहे हैं। हम कहेंगे अब ये तो क्या काम है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नींद सिर्फ रेस्ट नहीं बल्कि एक तरह का मेडिटेशन और हीलिंग प्रोसेस भी है, आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो एक बात तो तय हो गई कि मेडिटेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप जो काम कर रहे हैं चाहे वो छोटे से छोटा हो उसको ध्यान से लगन के साथ प्यार से मजे से करें तो वो भी एक तरह की साधना ही हुई।
4: एब्सोल्युटली, वो भी एक साधना ही है, वो भी एक मेडिटेशन है।
3: वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुल, अच्छी बात है। तो सोना भी एक साधना ही है अगर आप ढंग से सो पाए तो।
4: सोना एक मेडिटेशन है डेफिनेटली, क्योंकि उस समय पर आप बहुत सारी चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे कई बार लगता है कि अगर ये स्लीप नहीं होती तो पता नहीं मनुष्य का क्या हाल होता।
3: अच्छी बात है,
4: क्योंकि आप अगर मन को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर पाते तो कम से कम जितना समय आप सोते हैं
3: वो तो कम से कम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।
4: डिस्कनेक्ट होते हैं बॉडी से, प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से। केवल आप रिचार्ज नहीं हो रहे पर आप रिलैक्स तो हो रहे हैं ना।
3: बहुत बढ़िया,
4: इट इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, वो निंद्रा योग भी जो कराते हैं।
3: बिल्कुल,
4: पर एग्जैक्टली वो तो नहीं मुझे पता क्या है, पर वो भी एक बहुत डीप स्टेज ऑफ रिलैक्सेशन होता है। लेकिन आप डिस्कनेक्ट हो गए थोड़े समय के लिए, आपको कुछ याद नहीं होता, आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपके चैलेंजेस हैं कुछ। फिर जब आप उठते हैं तो फिर आपके अंदर नई ताकत आ जाती है, मन में भी तन में भी, उस चीज को फेस करने की।
3: बिल्कुल,
4: तो एक प्रकार का मेडिटेशन है पर रिलैक्सेशन तक सीमित है। और एक है रिचार्ज होना, अपने मन को पावरफुल बनाना कि अवेकंड स्टेज में भी आप जो सोचना चाहे आप सोच सकते हैं।
3: सही बात है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: गेट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर रात को सोते वक्त मन शांत नहीं हो तो गाइडेड मेडिटेशन कैसे हेल्प कर सकता है, आइए स्लीप मेडिटेशन के बारे में जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक इंटरेस्टिंग सवाल है, आया है मेरे पास, वो पूछ रहे हैं कि अच्छी नींद कैसी होनी चाहिए, ऐसी नींद जब टाइम पर नींद आ जाए, रात में बार बार नींद ना खुले, सुबह उठने के समय और सोने का मन ना हो, थके हुए ना उठें, यानी कि फ्रेश उठो, खुश उठो, उठने के बाद रिलैक्स फील हो, तो ये नींद जो है ये कैसे आए, ये आज तो सपना लग रहा है।
4: इसी की तो हमने सारी बातें करी ना कि दो चार चीजें अगर हम, ये सब रिजल्ट है, तो ये सब अगर हमें चाहिए तो फल पर कभी नहीं मेहनत करनी होती, बीज पे मेहनत करनी होती।
3: क्या बात है,
4: फल तो अपने आप निकल आएगा। आप जब बीज डालते हैं तो आप देखते हैं पानी ठीक है, खाद ठीक है, धूप ठीक है, हवा ठीक है, तो वो फल निकलता है। अभी फल मुझे चाहिए, नींद भी अच्छी चाहिए, उठ भी अपने आप चाहे, बीच में टूटनी भी नहीं चाहिए, टाइम भी पूरा, दिस इज लाइक अ परफेक्ट फ्रूट है, जो स्वीट फ्रूट है। तो उसके लिए इफ आई एम रेडी टू डू ऑल दो स्टेप्स, जल्दी खाना है, मुझे सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होना है, मुझे थोड़ा समय रात को अपने साथ बिताना है, कुछ जर्नलिंग करनी है, ग्रेटिट्यूड करना है, फिर अगर आपको नहीं नींद आ रही तो आप कोई मेडिटेशन कॉमेंट्री प्ले कर दे। सी मेडिटेशन आप यूट्यूब पर भी देखेंगे, गाइडेड मेडिटेशन होते हैं,
3: राइट।
4: वो गाइडेड मेडिटेशन क्या होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं,
3: बिल्कुल।
4: आपसे आपका मन स्लो नहीं किया जा रहा,
3: तो आप हेल्प ले लो,
4: आप उसको प्ले करेंगे, वो स्लो, एक तो पॉजिटिव है और स्लो है, आप सुनते हैं आपका मन स्लो डाउन होना शुरू होगा, क्यों नींद नहीं आ रही है, मन फास्ट है, मन को स्लो डाउन करना नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता, तो फिर हमें स्लीपिंग पिल की उस पर डिपेंड होना पड़ता है। आज अगर आप देखें वन ऑफ द मोस्ट, ये जो सेल, ड्रग सेल होता है इतनी ज्यादा स्पीड से, वो स्लीपिंग पिल है। अगेन इट्स अ साइन कि आपका आपके मन पर कंट्रोल नहीं है, मन आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आपको उसको शांत करने के लिए भी, स्लो डाउन करने के लिए भी एक स्टिमुलेंट की जरूरत है। इट्स नॉट अ गुड थिंग।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या आप जानते हैं कि एक हेल्दी स्लीप साइकिल आपको अपने गोल्स के लिए ज्यादा फोकस्ड और डिटर्मिंड बनाती है? आइए समझते हैं कैसे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: और ये बात अगर हम जिस दिन समझ जाएं कि बेटर स्लीप लीड्स टू बेटर कॉन्सेंट्रेशन, कि भाई हमारी जो एकाग्रता वो बढ़ जाती है, कॉग्निशंस यानी कि संज्ञान जो है उसकी एबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी यानी कि जो उत्पादकता है हमारी वो बढ़ जाती है, और परफॉर्मेंस प्रदर्शन भी बढ़ जाता है। ये चार दो सीज और दो पीज हैं, सो कॉन्सेंट्रेशन, कॉग्निशंस, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, ये बढ़ जाती हैं। अगर हम बीज भी देखें, और अगर बीज ना देखना चाहें तो कम से कम फल देख लें, अगर हमको फल इतना कुछ मिलने को मिल रहा है तो हम बीज पे शायद ध्यान देना शुरू कर देंगे।
4: फल ही अट्रैक्ट करता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फल को तो देखना ही पड़ता है बार बार। जो चीज मोटिवेट करती है वो एफर्ट नहीं करता, मोटिवेट तो हमेशा रिजल्ट ही
3: रिजल्ट
4: करता है।
3: यार ये हो जाएगा।
4: हाँ, आप रिजल्ट, आप कुछ रिजल्ट देखना चाहते हैं या आप किसी में वो रिजल्ट देखते हैं तो वो रिजल्ट का रिमाइंडर ही आपको मोटिवेट करता है।
3: बिल्कुल।
4: आज अगर किसी को डॉक्टर भी बनना तो बार बार देखता रहता है कि चार साल के बाद मैंने ये पहना हुआ है, व्हाइट कोट पहन के मैं भी हूँ हॉस्पिटल में, चल रहा हूँ, पेशेंट्स को कर रहा हूँ। सो समवेयर द रिजल्ट मोटिवेट्स यू, पर उसके बाद एफर्ट,
3: एफर्ट
4: उसमें चाहिए, दृढ़ता, वहां पर हम हो जाते हैं, जो हमने पहले भी कई बार बात की, दृढ़ता सफलता की चाबी है।
3: हाँ बिल्कुल, दृढ़ता सफलता की चाबी है।
4: देखो इसमें ये भी हमें समझना पड़ता है कि कोई भी चीज जब हम नई शुरू करते हैं वो हमेशा डिफिकल्ट होती है।
3: बिल्कुल।
4: लेकिन वही चीज थोड़े दिन के बाद इजी हो जाएंगी और थोड़े दिन के बाद नेचुरल हो जाएंगी, नेचर बन जाएगी। जैसे गाड़ी है, आप पहले चलाते हैं
3: बहुत दिक्कत होती है,
4: फिर धीरे धीरे आप नहीं चला रहे होते गाड़ी, आप तो बात कर रहे होते हैं, फोन पर भी होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं, तो भी आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। वो नेचुरल हो जाता है, आपका संस्कार बन जाता है, चला आप ही रहे हैं, बट आपको रियलाइज भी नहीं होता मैंने कब लेफ्ट टर्न लिया, मैंने कब राइट टर्न लिया, पर उस फेज तक आने के लिए क्या लगा? प्रैक्टिस, दैट्स इट। प्रैक्टिस इज सच अ सिंपल बट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड।
3: यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या नींद की कमी को बाद में पूरा किया जा सकता है? आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, जब हम स्लीप की बात कर ही रहे हैं तो कई लोग कॉम्पनसेटरी मेजर भी करते हैं कि कई बार रात को नींद अच्छी नहीं आती, तो कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करते हैं कि एक स्टडी आई थी, उसमें लिखा हुआ था कि 36% जो लोग जनता है इंडिया में वो दोपहर में संडे को सोती है, और कुछ लोग हैं वो वीकेंड्स पे ज़्यादा सोते हैं, और कुछ लोग हैं 13% जो हॉलीडेज पे ज़्यादा सोते हैं। कुछ देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि भैया ये शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है कि सेम टाइम पे उठो और सेम टाइम पे वापस सो भी। तो जो लोग ये कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं क्लियरली उनको पूरी नींद तो आ नहीं रही है और वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में उनको क्या कहें?
4: आप पूरा हफ्ता एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप सैटरडे संडे को, सी इट इज लाइक, अगर आप डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं और सैटरडे संडे भी करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है, और आप नहीं कर पाते तो सिर्फ सैटरडे संडे करते तो हम कहेंगे वो भी अच्छा है। चलो कुछ तो आपकी बॉडी को एक्सरसाइज मिली, कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी मिली,
3: कहीं से तो शुरुआत
4: होती है। प्रॉपर तो प्रॉपर ही है, जिसको हम नंबर वन कहेंगे कि आपका जो प्रॉपर स्केड्यूल है वो तो बेस्ट है। आप कोशिश करके जितना उसको मेंटेन करते हैं अपना 6-7 आवर्स का जो स्लीप साइकिल है, दैट इज नंबर वन। वो आपको लैटर रन में आपकी फिजिकल बॉडी को बहुत अच्छा रखेगा, उससे बीमारियां नहीं होंगी आपको। अगर आप नहीं कर सकते तो कॉम्पनसेट करना तो बहुत जरूरी है। अगर आप वीकेंड पर भी उस चीज को कॉम्पनसेट नहीं करेंगे, उतना भी नहीं करेंगे, तो फिर तो और जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सोने से पहले आप क्या देखते हैं या सुनते हैं, इसका आपकी नींद पर क्या असर पड़ता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: लेकिन आप कह रही हैं कि कॉम्पनसेट ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अगर पॉसिबल हो तो कॉम्पनसेशन को ओरिजिनल जो नॉर्मल फ्लो ऑफ तरीका है वो करने में कोशिश करो।
4: कॉम्पनसेशन कब करना पड़ता है, जब आप नहीं वो
3: नहीं कर पा रहे हैं।
4: मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, अभी हमारा काफी समय थोड़ा वेस्ट में भी जाता है। उसको अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, जैसे एंटरटेनमेंट के नाम पर, रिलैक्सेशन के नाम पर कोई माइंडलेस स्क्रोलिंग है, किसी से बहुत लंबा फोन पे बात है, क्या आप कट कर सकते हैं?
3: तो ये बहुत अच्छी बात, कोई एक मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं सारा दिन थक हार के काम करके लौटता हूँ और वो अकेला रहता है, और वो कहता है कि मैं घर ही पहुँचता हूँ, मेरा जो काम है मैं घर ही पहुँचता हूँ करीब रात को 9:30 बजे। कभी कभी तो खाने का भी मन नहीं होता, थोड़ा बहुत खा भी लेता हूँ और फिर अपने लिए यही टाइम मिलता है मुझे। अब सोने के पहले अगर मैं 1 घंटा या 1/2 घंटा टेलीविजन नहीं देखूंगा तो ये क्या बात हुई? तो एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ तो चाहिए मुझे।
4: एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या कंज्यूम कर रहे हैं? सेल्फ केयर जरूरी है, पर हम सेल्फ केयर वो नहीं कर रहे जो मुझे एम्पावर कर रहा है। हम सेल्फ केयर या रिलैक्सेशन या एंटरटेनमेंट के नाम पर वो कंज्यूम कर रहे हैं जो हमें कई बार डैमेज कर रहा है। जैसे हम कई बार क्राइम देख रहे होते हैं, थ्रिलर देख रहे होते हैं, आप अगर वो लेकर के सोएंगे तो वो स्लीप आपकी बहुत क्वालिटी स्लीप नहीं हो सकती है। आपके ड्रीम्स भी कई बार वैसे हो जाते हैं। कई बार नोट भी आपने किया होगा, अगर हम कुछ देखते देखते सो जाते हैं, कई लोग कॉन्शियसली नहीं सोते, जैसे माइंडफुल की बात करें, एक्चुअली स्लीप भी माइंडफुल होनी चाहिए। आप यू आर प्रिपेयर्ड, नाउ यू आर गोइंग फॉर रेस्ट। आप आंखें बंद करके लेट जाते हैं, आपने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, आपने अपनी जर्नलिंग आदि कर ली है, पर कईयों के साथ ऐसा नहीं होता, आप देखते देखते सो जाते हैं,
3: राइट।
4: लाइट खुली है, टीवी चल रहा है, आपको पता ही नहीं चला, आप कहते मेरे को पता ही नहीं चला मेरी कब आंख लग गई। जब ऐसा होता है तो आप बहुत अच्छा नहीं सोते हैं, आप कंज्यूम करते करते सो गए थे, कई बार वही आपका ड्रीम बन जाता है।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: टॉप कॉन्शियस लेयर जो होती है वो स्लो डाउन हुए नहीं ना, वही आपके ड्रीम बन गए, तो आपका मन चली रहा है, फिर उठने का भी टाइम हो गया, यू विल नेवर फील वेरी फ्रेश, आप थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करते हैं। फिर एंटरटेनमेंट के नाम पर कभी कभी हम कॉमेडी कंज्यूम कर रहे हैं। अगेन कॉमेडी इज गुड, बट आजकल की कॉमेडी में भी अब्यूज है। अब देखो, अब्यूज सुनते सुनते हमारी नॉर्मल लैंग्वेज अब्यूजिव हो गई है बच्चों की आजकल, ऐसा तो नहीं है उसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा। तो जो भी हम पहले तो जो कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो एम्पावर करना चाहिए। ये भी एक कॉन्शियस चॉइस सबको बनानी चाहिए कि आप जो देख रहे हैं आपको इंस्पायर करे, आपको एम्पावर करे, आपको और काइंड बनाए, आपको कंपैशनेट बनाए, आपको लविंग बनाए। आप ऐसा कुछ कंज्यूम करते हैं थोड़ी देर के लिए, विच इज ऑल्सो गुड, बिकॉज वो आपको अच्छा फील कराएगा। अच्छा फील करते तो सोएं, डर फील करते हुए, एंजाइटी फील करते हुए, ऐसा फील करते हुए क्यों सोएं? सो इट्स अ कॉन्शियस चॉइस है ये।
3: गुड पॉइंट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: morning, only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: रात को नींद ना आने के तीन बड़े रीजंस क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: टॉप थ्री रीजंस जो आदमी नहीं अच्छे से सोता, उसमें से एक हमने कवर किया था कि भाई सोशल मीडिया कई बार उनको रोकता है और एंडलेस स्क्रोलिंग, माइंडलेस स्क्रोलिंग कई बार होता है। दो और कारण है जो निकल के आए हैं, वो ये है स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग, ये दूसरा पॉइंट है, और तीसरा है इररेगुलर स्लीप शेड्यूल। इररेगुलर स्लीप शेड्यूल के बारे में हमने बात की है कि भाई कोशिश करो सही टाइम पे सो और सही टाइम पे वो धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी, और हमने सोशल मीडिया पे जो बिंज वॉचिंग है वो हमने उसके बारे में बात की है। जो स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग है, कई बार इंसान सारी चीज़ें कर रहा है, प्रक्रिया है, वो सही टाइम पे जा रहा है, सो रहा है, 3 घंटे पहले सब कुछ बंद कर दिया, 1 घंटे पहले अपना लाइट ऑफ कर दिया, और फिर वो सोने की प्रक्रिया में जा रहा है, लेकिन अब दिमाग जो है वो इधर उधर जा रहा है, वो सोच रहा है, उसको स्ट्रेस हो रहा है, ओवरथिंक कर रहा है वो, ये मैंने क्यों किया, उसको मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा मैं नहीं बोलता तो ठीक रहता, और कभी कभी उससे दिमाग हट भी जाता कहीं और चला जाता है। तो स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग इज टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ द टॉप थ्री रीजंस जिसके कारण इंसान सो नहीं पा रहा। क्या करें
5: उसके लिए? दिन भी माइंडफुली बिताएं। नींद का कनेक्शन बहुत ज्यादा है, आपने सारा दिन कैसे बिताया है। सुनने में तो बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बहुत इम्पैक्टफुल है। न दुख दे न दुख ले। देना भी नहीं है,
4: लेना भी नहीं है,
5: लेना भी नहीं है। हमें ये तो सिखाया जाता है देना नहीं है, ये नहीं सिखाया जाता लेना नहीं है।
4: अच्छा, लेना नहीं मतलब कैसे करें?
5: लेना नहीं है माना किसी ने आपसे ठीक से बात नहीं करी, किसी ने आप पर गुस्सा किया, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, किसी ने आपको कुछ
4: बुरा बर्ताव किया। बुरा नहीं मानना है,
5: बुरा हम उसको अब्सॉर्ब करके ही तो ओवरथिंक कर रहे हैं ना रात को। ओवरथिंकिंग क्या है?
4: आपने मुझे ऐसा क्यों बोला?
5: इट कुड बी एज सिंपल एज ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, ये ड्रेस आप पर ठीक नहीं लग रही थी, ये आपका काम करने का तरीका ठीक नहीं है। ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है।
4: जरूरी नहीं है कि वो सच है,
5: फैक्ट नहीं है। ये भी बहुत सुंदर, एक बारी एक मदर ही अपने बच्चे को सिखा रही थी। वो बच्चा, बच्चों में तो शुरू हो जाता है ना, तो स्कूल गई, किसी ने कहा जो पहना है वो अच्छा नहीं लग रहा है। शी वॉज वेरी लो, सो मदर ने उसको बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि ये जो लाइन है कि एप्पल रेड कलर का है, फैक्ट है कि ओपिनियन है?
4: फैक्ट है,
5: फैक्ट है। एप्पल बेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड है, फैक्ट है कि ओपिनियन है?
4: ओपिनियन है,
5: ओपिनियन है। सो ओपिनियन विल ऑलवेज डिफर।
4: क्या बात, बहुत बढ़िया।
5: ओपिनियन विल ऑलवेज डिफर, वो सबके अलग अलग होंगे, फैक्ट सेम रहेगा। अब किसी ने कहा कि आपने जो पहना है वो अच्छा नहीं लग रहा, ये कलर आपको सूट नहीं कर रहा, ये किसी का
4: ओपिनियन है।
5: ओपिनियन को एक्सेप्ट करना, फिर उससे आइडेंटिफाई करना, फिर उसको अपने मन में बार बार चलाना, फिर बार बार चला करके हर्ट होना, फिर हर्ट होकर के ओवरथिंक करना, ये तो मैंने किया ना। तो हम हर बार, तो वो मदर भी अपने बच्चे को सारा जीवन भर प्रोटेक्ट करने तो नहीं जा सकती है, कोई नहीं जा सकता,
4: लेकिन उसको तरीका दे सकती है जिससे वो समझे।
5: टूल्स देने पड़ेंगे, तरीके देने पड़ेंगे जिससे वो अपने को प्रोटेक्ट करे क्रिटिसिज्म से। दुख लेना नहीं है, हम कोई डस्टबिन थोड़ी नहीं है कि जिसका आज किसी का डस्टबिन में क्या, तब कचरा फेंकते हो ना।
4: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने, बहुत बढ़िया बात बोली कि हम डस्टबिन नहीं, दूसरों का इकट्ठा किया हुआ कचरा हम क्यों।
5: कोई फ्रस्ट्रेटेड है, कोई गुस्से में है, कोई परेशान है, कोई एंशियस है, वो अपनी नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहा है, हमें धारण करने की क्या जरूरत है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सोनिया रजोरिया है, वो पूछती हैं कि मेरा बेटा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है और वो सोचता है कि उसे सब कुछ आता है और इससे वो अपने एग्जाम्स में आराम से पास हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ और कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं सुनता। प्लीज़ मेरी मदद करिए, इस सिचुएशन से मैं कैसे डील करूं? मेरा बेटा जो है वो एग्ज़ाम में फेल हो गया है, इसके बावजूद कि मैंने उसे बोला था कि तुम पढ़ो और ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बच्चों के इस एटीट्यूड को कैसे तोड़ें?
2: अगर हम उस समय पर हैं कि वो फेल हो गया है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके घर की करंट सिचुएशन है, तो पहली चीज ये बिल्कुल नहीं कहना मुझे पहले से पता था, मुझे तो पता ही था, ये तो होना ही था। ये हो जाता है कई बार, क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो दिख ही रहा था ये चीज। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भले वो ओवर कॉन्फिडेंट था, अब जब वो फेल हो गया है तो उसका उसके मन पर जरूर इम्पैक्ट होगा।
1: बिल्कुल।
2: इसलिए एज अ पेरेंट जब कोई किसी फेलियर से गुजरता है तो पहली चीज होती है उसके मन को शक्तिशाली बनाना।
1: अच्छा,
2: सिखाएंगे बाद में। वो तो सिखाना ही है, लेकिन आप कमजोर मन को तो नहीं सिखा सकते ना। आप कमजोर मन को शिक्षा नहीं दे सकते। मैं अभी आपसे चलते चलते गिर जाऊं, अपनी गलती से भी गिरूं, तो भी आप पहले क्या करेंगे?
1: पहले उठाएंगे,
2: पहले ध्यान देंगे, फर्स्ट एड देंगे, फिर जरूर मुझे सिखाएंगे कि आपको देख करके चलना चाहिए, आपको ध्यान से चलना चाहिए, आपको फोन पर टाइप करते करते नहीं चलना चाहिए। शिक्षा इज ऑलवेज सेकंड। पहले आपको उस व्यक्ति को हील करना पड़ता है। सो अगेन, अगर वो फेल हो ही गया है तो वो गिल्ट में भी होगा, उदास भी होगा, थोड़ा सा जो भी उसके इमोशनल टर्मोइल होगी। एज अ पेरेंट आपका रोल है पहले उसको बाहर निकालना, उसका स्वमान बढ़ाना। हो गया जो हो गया, अभी फुल स्टॉप लगाओ, आगे क्या करना है। इट इज ओके, एक बार आप फेल हुए इसका मतलब आप फेलियर नहीं हो।
1: हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना।
2: पेरेंट ही लेबल कर देते हैं
1: कि तुम फेलियर हो,
2: आप फेलियर हो, मुझे तो पता ही था, ये तो दिखाई दे ही रहा था, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप फेलियर हो। वो जो आप रंग रंगते हो ना बच्चे की एक इमेज, वो जीवन भर उसके साथ चलते
1: हैं। वो ज्यादा उसे परेशान करेगी,
2: क्योंकि लाइफ में मार्क्स आपको फर्स्ट जॉब दिलाते हैं, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो आपको लाइफ टाइम मदद करता है।
1: बहुत खूबसूरत।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अभी तक अगर तुम कॉफी ढूंढ रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, तुम ऑफिशियली फंक्शन कर रहे हो जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। देखो अभी अभी ये शो मिर्ची मॉर्निंग शुरू हुआ है, मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर होती है ऐसी बातें जो स्नूज मोड से बाहर निकालती है तुमको। अगर अभी फिलहाल तुम पार्कवे पर हो, सबवे पकड़ रहे हो, या फिर ऑफिस में लॉग इन कर रहे हो, या बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके फाइनली मी टाइम एंजॉय कर रहे हो, यू हैव गॉट कंपनी। अगले कुछ घंटों तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। हम साथ में मिलकर इस मॉर्निंग को, इस दिन को थोड़ा सा लेस में और थोड़ा सा सुपर वाव बनाने वाले हैं। आज के शो में होने वाली है कुछ बॉलीवुड की गपशप, कुछ फन स्टोरीज, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ी सी मस्ती, एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक जो कि सारा का सारा मिर्चीदार और बैंगर है। और ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं, बहुत सारे पीजेस मैं मारने वाली हूँ। काश कैलोरीज लाफ्टर से बर्न होती। खैर लाफ्टर से कैलोरीज बर्न नहीं होती, लेकिन मूड अच्छा हो जाता है, और इस मूड को अच्छा बनाए रखेंगे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, फटाक से मुझे फॉलो कर लो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS इंस्टाग्राम और एक्स पर, और साथ में व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na pierdva la burga. Milci, burga.
1: हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ? गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपका। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी।
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल, कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे।
2: सही बात कह रही हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं
1: हाँ, किससे बात कर रहे?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
1: हेलो,
2: हाँ बोलिए।
1: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए।
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
1: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
2: हाँ?
1: नकली तरह से आप मेरे से
2: नहीं,
1: बातें
2: नहीं,
1: कर रहे
2: नकली तरीके से क्या?
1: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली औकात
2: नहीं, नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
1: वो तो कोई बपौती है क्या?
2: नहीं, तमीज सीख ले।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी है।
2: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया।
1: Oh my.
2: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और अब चलेंगे हम टाइम ट्रैवलिंग के लिए। 1881 में सिटिंग बुल, जो सू ट्राइब के लेजेंडरी चीफ थे, उन्होंने यूएस फेडरल ट्रूप के सामने सरेंडर किया। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री का डायरेक्शन ही बदल दिया। 1960 में हमारे साउथ एशियन नेबरहुड में से एक प्राउड मोमेंट, सिरिमाओ बंदरानायके ने श्रीलंका, तब सेलोन की प्राइम मिनिस्टर की ओथ ली और वो बनी दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। 1969 में वो लाइन जो हिस्ट्री के बुक से लेकर मूवी डायलॉग्स तक इमॉर्टल हो गई, नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने अपोलो 11 मिशन के थ्रू मून पर पहला कदम रखा। जब लोग कहते हैं ड्रीम बिग, आज तो इंसान चांद पर पहुंच चुका है। और 1976 में नासा का वाइकिंग 1 मार्स पर सेफली लैंड हुआ और रेड प्लैनेट की पहली क्लोजअप फोटोज अर्थ को भेजी गई। ये सेल्फीज नहीं थी लेकिन उस जमाने की बेस्ट अपलोड जरूर थी। वैसे अगर तुमको भी ऐसे कुछ फन फैक्ट्स पता है हिस्ट्री के बारे में, मुझे बता सकते हो, मुझसे शेयर कर सकते हो। आई विल रीड देम आउट ऑन द शो मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, मेरा नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची वॉच इट।
1: न्यू जर्सी में हुए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। हीरो बने फेरान टोरेस, जिन्होंने 106 मिनट में एक्स्ट्रा टाइम का मैच विनर दागा। अर्जेंटीना को बड़ा झटका तब लगा जब एंजो फर्नांडिस स्टॉपेज टाइम में रेड कार्ड देखकर बाहर चले गए। स्पेन ने अपना सेकेंड वर्ल्ड कप जीता है, वो भी 16 इयर्स के बाद, और साथ में $50 मिलियन का विनर चेक भी जीता है। लायनल मेसी ने रेफरी से अपील भी की कि स्पेन के डिफेंडर मार्क कुकुरेला को माउथ कवर करके बात करने पर रेड कार्ड दिखाया जाए, लेकिन रेफरी स्लोवाको विंट्रिक ने प्ले ऑन कहा और गेम चलता रहा। ड्रामा फीफा वर्ल्ड कप का पेड एक्टर था इस बार। टूर्नामेंट में गोल्डन बूट गया किलियन एम्बापे को फॉर 10 गोल्स। गोल्डन बॉल जीता स्पेन के कैप्टन रोड्री ने। बेस्ट यंग प्लेयर बने 19 ईयर ओल्ड पाओ कुबार्सी, और गोल्डन ग्लव जीता स्पेन के गोलकीपर उनई सिमोन ने। स्पेन सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी घर नहीं ले गए, बल्कि ऑलमोस्ट अवार्ड का शेल्फ भी घर ले गए हैं। और अर्जेंटीना वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाई, लेकिन उनके प्रेसिडेंट हावियर मिलेई ने एक अनएक्सपेक्टेड गूगली डाल दी है। उन्होंने अनाउंस किया है कि टीम की वर्ल्ड कप जर्नी को ऑनर करने के लिए नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर किया जाएगा। डेट अभी डिसाइड होनी बाकी है और वो प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ से डिस्कशन के बाद फाइनल होगी। फिलहाल तुम्हारी लिस्ट फाइनल है, आगे आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 Mirchi, that's 9033 64 7244. Stay tuned and stay hot.

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है। होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज अ रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स, ओडिसी एक बार अवश्य देखें, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब चलो देखते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स पर मौसम का हाल चाल क्या है। फिलहाल टेम्परेचर है 60 डिग्री फारेनहाइट, सनशाइन फुल वॉल्यूम पर है, लेकिन हवा थोड़ी सी नोटी चल रही है, 58 डिग्री फारेनहाइट जैसा फील करा रही है। गुड न्यूज ये है कि पूरा दिन सनशाइन ही सनशाइन रहने वाली है। अम्ब्रेला को आज पेड लीव दे ही दो तुम, क्योंकि अगले 24 घंटों में रेन का जीरो चांस है। यस, 0 मिलीमीटर्स की प्रेसिपिटेशन है, जस्ट लाइक येस्टरडे। तो आज वॉशिंग मशीन भी खुश हो जाएगी, तुम्हारी लॉन्ड्री भी खुश होने वाली है। टेम्परेचर सुबह 58 डिग्री फारेनहाइट से स्टार्ट होगा और आफ्टरनून तक जाते जाते 83 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाएगा, लेकिन फील होने वाला है 57 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 86 डिग्री फारेनहाइट के बीच में। और हाँ, आज का हाई ऑलमोस्ट कल के जैसा ही है, कल 82 डिग्री फारेनहाइट हाई था और आज जाने वाला है 83 डिग्री फारेनहाइट तक। सो फिलहाल ऑफिस जा रहे हो, रोड ट्रिप पर जा रहे हो या फिर मॉर्निंग वॉक फिनिश कर रहे हो, सनग्लासेस साथ में लेकर जाना, चिपका कर जाना अपने मुंह पर सनब्लॉक, SPF 50+++, एंड ऑफ कोर्स कैरी योर वाटर बॉटल, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेयर के प्लेयर बनो और साथ में मिर्चीदार वाइब्स को अपने पास चिपकाए रखो। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मैं हूं मिर्ची प्रिस के नाम से, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब टाइम हो चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर जानने का कि दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले हैप्पी फैमिली अपडेट फ्रॉम द यूएस। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और उनकी वाइफ उषा वैंस ने अपने फोर्थ बेबी का वेलकम किया है, अ बेबी बॉय नेम्ड एलेक नील वैंस, और हिस्ट्री भी बन गई है। क्यों? क्योंकि ये 156 इयर्स के बाद पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग यूएस वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में रहते हुए उनके घर बेबी बॉर्न हुआ है। कंग्रेचुलेशंस टू द होल फैमिली। नंबर टू पर पाकिस्तान ने कराची में एक साइकिल एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की है और सोशल मीडिया ने ब्रेक्स ही नहीं लगाए हैं। मीम्स की फुल ऑन बारिश हो रही है। कुछ लोगों ने इसे इको फ्रेंडली आइडिया कहा है और कुछ लोगों ने इसे इंटरनेट स्टाइल सरकाज़म सर्व कर दिया है। और फाइनली नंबर थ्री पर इंडिया में पार्लियामेंट के बाहर स्पेस अचीवमेंट्स सेलिब्रेट किया गया। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने स्काईरोड एरोस्पेस की यंग टीम की तारीफ करते हुए उनकी एवरेज एज 28 ईयर्स का जिक्र किया है और अपनी स्पीच में एक पॉलिटिकल जाइब भी दिया है At Rahul Gandhi. And that's it for Mirchi Hour Ka 3. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। सुनते रहो मुझे और साथ में मुझसे कनेक्ट भी कर लो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची। That's 9033647244. Stay connected, stay tuned and stay hot.

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Energy, burga.
2: Hello.
3: Is that Mr. Vipul?
2: Yes.
3: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
2: हाँ हाँ बोलिए।
3: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
2: Okay.
3: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
2: बट इसमें करना क्या होगा?
3: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
2: फाइन।
3: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
2: मिलता है।
3: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
2: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
3: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
2: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ। बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
2: Have you gone mad?
3: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी?
2: Talking about?
3: और इसमें
2: क्या बकवास कर रहे हैं?
3: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
2: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। ओके,
3: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते हैं पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
2: हेलो
3: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
2: हाँ, हु आर यू?
3: सर मनीष।
2: हु आर यू?
3: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
2: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ। बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. ये है मिर्ची मॉर्निंग्स. कैटरीना कैफ ने अभी रिसेंटली अपना 43rd बर्थडे मनाया और बहुत ही सुपर अडोरेबल तरीके से मनाया. उन्होंने कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर किए और ऑनेस्टली ये फुल ऑन हार्ट मेल्टिंग मटेरियल था. पिक्चर्स में हबी विकी कौशल के साथ कोजी बर्थडे मोमेंट्स उन्होंने शेयर किए और सबसे प्यारी फोटो पता कौन सी थी? कैटरीना अपने लिटिल वन यानी कि विहान के टाइनी टाइनी हैंड्स को किस करती हुई नजर आई है पिक्चर्स में. फेस प्राइवेट रखते हुए उन्होंने प्राइवेसी भी मेंटेन की है और क्यूटनेस का ओवरलोड भी दे दिया है. कैप्शन भी बड़ा ही क्यूट था. कैटरीना ने लिखा, The most precious blessing that you are. Best birthday. फैंस तो कमेंट में बस एक ही बात बोल रहे थे, और विक्की भाई साहब ने तो पहले ही बर्थडे विशेस में रोमांस का फुल वॉल्यूम ऑन कर दिया था. कपल गोल्स का हैशटैग इन दोनों के पास लाइफ टाइम लगा हुआ है. हाय